इलेगल आउट ऑफ डाउट सक्सेस हो गया मैं आपने लाउट चाक ने ना ना वो में पे वाले पैनिक पता सिला ले गया ना अब लोगों ने तमाने की वाले में अम्मा के चंग में उन्हें संग ना तमाल तलु तुम गसुला ओ मिगिट्सी तेरे सायक समिं